सामने खड़ा साईं मियां मीर हजूर कहंदे ने साईं जी तुसी किसी दिन एक सवाल कीता सी, ओ सवाल केड़ा है? मियां मीर जी ने एक सवाल कीता सी, भला ए किवें हो सकदा है खुशी ते गमी नू इको जिहा कोई मन्ने? खुशी ता खुशी हुंदी है ते गमी गमी हुंदी है। जितना बंदा किसे दे व्याह ते खुश हुंदा है ते जदों किसे दी अर्थी नाल जा रहा होवे ओ खुशी ता नहीं ना हुंदी। कहन लगा सच्चे पातशाह आप जी ने सुखमनी साहब जी दे विच एक पौड़ी उचारी है, ओ केड़ी पौड़ी है? तुसी भी सारे रोज पढ़ते हो,

के पवित्र बाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारिया श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तैनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदिया भी देर नहीं लगती, जांदिया भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई, मां ने रो रो के अखां गवा दितियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए, आवाज दिती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया, ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई, अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं, मां दे गल ना लगे, माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलियां तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले।

उस पूर्ण जोत करके मन लीए ते गल साडी समझ आ जाएगी। क्योंकि इथों आवाज आउंदी भगत कबीर जी दा एक शब्द जिस अंदर वो ये आवाज दे रहे ने, आओ उस आवाज नूं आपां बुलंद करिए।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया है, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम कीता है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागा है, तेनू शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि इस शरीर तेनू दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाउ

this is what we have done. ऐसे किया है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहाट किसी ही पे सगले लर लर मुआ बात बात विवाद. हरेक दे जीवन च बात विवाद है, हरेक दे जीवन च बात विवाद, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिल्यो दुआ, किसी ही बात घाट किसी ही पै सगले लर लर मुह, किसे दे थोड़ा जा घट किसे दे थोड़ा जा वध, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जिहड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इना चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता, तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तरह एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया,

जगे और न यहे महत्व में अवतारी उजागर ज्ञान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा में।

सुन बेद बिरंत बिचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनु सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिस दे पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप को गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है, फिर मैं गरीब नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी वाणी च आखते हैं,

0: दुख पेन सफरिंग मिजरी कहते कहते जहर है लाइफ जी, पॉइजन है दुख, मोहरा मोहरा मैंने पॉइजन। जितने भी साड़ी लाइफ पेन है मिजरी है दर्द है सफरिंग है वो कहते एक जहर है। हुण उस जहर का इलाज की है, मारण लफज वरत्या है, मारण का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जावे, अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जावे कहते उस मारण आके। अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के पॉइजन है तो उस पॉइजन नु केड़ी चीज मार सकती है? बहुत ज्यादा ध्यान दो, ट्राई टू बी फोकस्ड। दुख मोहरा दुख जहर है, उस जहर नु मारन दे वास्ते ए बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हैं, इन द सेंस कि जिस किसे इंसान की जिंदगी अत दुख है सफरिंग है मिजरी जहन उदे वास्ते एक सोल्यूशन दसया जा रहा है, एक वे आउट है, एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है, दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं, तो महाराज जी आखदे ने मारण मारण का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई, जड़ी दवाई है उस जहर नु मुका सकती है कहते हैं वो है हर नाम वाहिगुरु का नाम। दुख महारा मारण हर नाम, दुख नु मारण वाला शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है वाहिगुरु का नाम। सो नानक के कारण सारे बोलो केवल नाम, इस पंक्ति नु याद करना है, वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे। नानक के कार केवल नाम, तो मैं तो बात बोल रहा करो कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी। नानक के कार दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, न समझी है, अज्ञानता है। तो महाराज जी ने पूछिए, महाराज इतनी अज्ञानता है इतनी नासमझी है इतना अंधेरा है तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नु दूर करन दा चानन जगान दा? तो गुरु महाराज जी आखदे हन
1: दीवा मेरा एक नाम,
0: कहते नाम ही एक ओ दीवा है जड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू, सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू, पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू, इग्नोरेंस नू, इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है वो सिर्फ नाम दा दीवा है। कहते मैं नाम दा दीवा लेके आया हूं। अते आप देखते हो जब दीवा बलदा है तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जड़ी बर्न हो जाती है, जड़ी सोख हो जाती है, जड़ी खत्म हुंदी है वो तेल हुंदा है, तेल खत्म हुंदा जांदा है। महाराज जी आखदे ने साड़ी सारी जिंदगी दे जड़े दुख हैं उन्हां नू समझो तेल दे विच, नाम दा दीवा जगा दो, नाम दी बत्ती जगा दो, नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नू बर्म करके रख देगी। जिस तरह जगदा होया दीवा

0: फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए। महाराज जी आखते हैं साढ़े घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम नु त्याउणा ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जांदा है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदों हुंदी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहते हैं साढ़े घर पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतों आज सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगर पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर सच है महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही कहते हैं। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो कि बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने के हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चा उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहने साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जिना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक सो हुण तक असा यह सुनया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा है। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नू हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले की टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम की छड़ी तो बिना चलने की कोशिश करते हैं वो गिटे गोडे जरूर तोड़ाणगे, वह गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए, गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार अपने अंदर टिका के रखो जो सुनया है। इतना कुछ सुनन तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम्भम सुमन सर्वदा सर्वजुगते।

पावन बाणी का कीर्तन आप भी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा पढ़ने लिए हाजिर होया। गुरु गोविंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी है। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैं होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैं ये भरोसा है जिस दे कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र दे उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र दी, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाउणा जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख वाक्य। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघां नूं पंज प्रकार की रहत दिती है ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्होंने मुख वाक बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहिब कहिंदे

कारण पोथियां नाम बिना सब पूर गाली होशी ते असी किवें बेखबर फिर रहे हां सब कुछ सुन के भी ये अखर कदे मन विच वसाण दा जतन नहीं करदे चार पुकारे ना तू माने चार वेद भी पुकार पुकार ए सुमति दे रहे हन के ऐ मनुष्य तू नाम जपन लई संसार ते आए सेवा और सिमरन करन लई तेनु सोना मनुष्या जन्म प्राप्त होए हजूर दा बचन है चार पुकारे ना तू माने खट भी एका बात बखाने शे शास्त्र भी तेनु एही पुकार पुकार कह रहे हन पई इना अमोलक हीरे लालां तू महंगे स्वासा दे नाल नाम दे लालां दा वणज कर लै वरी ते मुड़ के हथ नहीं आउणगे जिहड़ा जल नदी तो लंघ जांदा है ओ मुड़ के कदे नहीं आया करदा जिहड़ा दुध थणा तो बाहर आ जावे ओ मुड़ के नहीं जांदा इस लई ए अमोलक स्वास जाई ना गवा चार पुकारे ना तू माने खट भी एका बात बखाने चार वेद भी तेनु पुकार दे रहे शे शास्त्र भी तेनु सुमति दे दे रहे फिर दस अस्ति मिल एको केहा दस ते अठ अठारह पुराण भी तेनु यही प्रेरणा दे दे हन भाई अमोलक स्वासा दे नाल सिमरन कर ले सेवा कर ले तेरा संसार ते आया सफल हो जावे धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने भाई फिर मुड़ के भी इस गल नूं विचार लै कि नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम तो बिना तेरे जितने कम हन ये होशे कम हन ये तेरे किसे कम आउन वाले कम नहीं इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह विसर नहीं आप कहिंदे ने हे वाहिगुरु मैनू कदे भी तू विसर ना बस ये दान मेरी जोली

प्रकृति दा ऐसा निर्मल जल जो पीतियां शरीर अरोग हो जांदा ते किसे धरती दा ऐसा कठोर जल भी हुंदा है जो अरोग शरीर नू नित दा रोगी बना देंदा है। आख्या वही नाम दोहां दा ही जल है पर एक जल सुख रूप है एक दुख रूप है। ऐसे प्रकार संसार विच संगत भी दो प्रकार दी है। कुसंगत प्राप्त हो जाए तो जीवंदियां ही नरक बना देंदी है। सत संगत प्राप्त हो जाए तो प्रभु दे नाल मिलाप करा देंदी है। इसलिए आप जल दा

सबना मरना आया विछोड़ा सबना। हर जो जन्मे है, हर जो बने है, हर जो उपजे है, उस हर एक ने मरना ता है। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, बाकी ये गल वखरी है। ओ मौत जो आम लोका वास्ते, जिवें कबीर जी का बचन सी, जिह मरने सब जगत तरासिया, जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी। मौत तां पता नहीं कदों आउणी, मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे, जीण नहीं पई देंदी। जिह मरने सब जगत तरासिया, सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिदा

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

से पाऊं जो तेरे रंग रात से स्वामी दिल का जन्म मर दुख नाता तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा जिस